0: ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਏਅਰ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਆਪ ਮਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲੀਜੀਏਗਾ तो क्योंकि यू आर ऑन एयर यू आर ऑल ऑन एयर वी आर ऑन एयर सो इस बात का ध्यान रखिएगा आपका परिचय
1: जी मैं शमा कपूर और वन ऑफ लाइक द पिलर ऑफ आशा सर्कल और हमारे जो मेन सुनीता दुपर जी हैं उनका साथ पकड़ के हाथ पकड़ के चलने वाले हैं जी
0: जी तो आप ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ
1: ਜੋ ਬੋਲੇਂਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ
0: ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਟ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ
1: ਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਹਿੰਦੀ
0: ਓਕੇ
2: ਤੋ
0: ਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਹੈਂ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਕੈਲਗਰੀ ਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਗਾਟ 1% ਫਰਮ ਮਲਿਆਲਮ ਆਲਸੋ and that's very good that speaks you know that different ethnicities of india and different cultures of india and that's very fantastic your name is prince really
3: yes my name is prince
0: why I'm asking really because prince is a prince
3: yes
0: so yeah so mr prince you're welcome
3: thank you
0: to shrotao ek bar main aapko ye bata dun ke jeevan mein जो मेरे जहन में यहाँ आते हुए मेरे जहन में बातें आ रही थी वो ये थी कि जीवन में चलना बहुत ज़रूरी है और चलते रहना बहुत ज़रूरी है और उसका एक बहुत अच्छा रूपक है दौड़ना बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि जीवन की दौड़ में हमको सबको भागना चाहिए दौड़ना चाहिए लेकिन उससे कुछ विश्राम भी लेना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी की जो रेट रेस जिसकी हम बात करते हैं या दौड़ की हम बात करते हैं उससे विश्राम लेने का एक बहुत बड़ा जरिया एक बहुत बड़ा एक जो उपक्रम है वो दौड़ना है यानी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटके कुछ समय अपने साथ बिताते हैं और दौड़ते हैं और अपने शरीर को अपने मस्तिष्क को क्योंकि हमें प्रिंस बताएंगे कि हमारी कोशिकाओं को हमारे टिश्यूज को कितना उससे बल मिलता है और कैसे उसमें रक्त संचार होता है और कितनी ऑक्सीजन मिलती है और हम बहुत देर तक अपनी जीवन यात्रा में सफल रह पाते हैं तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो विचार यानी कि दौड़ लगाई जाए या लोगों को दौड़ाया जाए अच्छे इस कार्यक्रम के लिए तो कैसे आपके
1: जी बिल्कुल सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर और हमेशा ही आते रहते हैं ये तो मेरा होम है कि मेरी शुरुआत ही करियर की यहीं से हुई थी सबरंग रेडियो से आई वर्कड अ लॉट हियर सो मैं जब भी आती हूँ तो मुझे लगता है वही दौड़ के हम वही पहुंच रहे हैं दिस इज अ जिंदगी इसके अलावा या फॉर श्योर वी आर मिसिंग राजेश जी ही इज लाइक ऑन द वे बट हम कई बार आ चुके हैं बता चुके हैं हमारा 90 डेज का जी एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था
0: जी.
1: 90 डेज का चैलेंज था जिसमें हमने सिर्फ लोगों को कहा कि चलिए चलिए और चलिए और जिससे काफी बेनिफिट्स हुए हैं मेरे जैसों ने भी वॉक करना शुरू किया और हमारा डेली जो ऐप है वो रिकॉर्ड करता है कि कौन कितना चल रहा है तो एक तरह का हेल्दी कंपटीशन चल रहा है और काफी लोगों को बेनिफिट्स भी हुए हैं और काफी अच्छी टीम भी बिल्डअप की है हमने और धीरे धीरे और आगे भी बन जाएगी और 90 डेज अब हमने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली और ये 90 डेज को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये और उसमें हम देखना चाहते हैं कि 5 किलोमीटर तो अब कुछ भी नहीं है हमारे साथ जो चल रहे हैं दौड़ रहे हैं बहुत दौड़ रहे हैं तो वी जस्ट वांट टू सेलिब्रेट सो दैट कि हम ये मैसेज पहुंचा पाए कि हेल्दी लाइफ और अपने ऑर्गन्स के लिए अपनी बॉडी के लिए अपने माइंड के लिए लाइफ के लिए चलना कितना जरूरी है दैट्स व्हाट वी वर टीचिंग अबाउट
0: तो ये मैं बताता चलूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आशा इसका नाम पहले सफर था
1: जी
0: और वो भी बड़ा खूबसूरत नाम था

0: लेकिन कोविड के समय में फिर कुछ हो नहीं पाया और फिर उसके बाद इन्होंने उसका नाम भी बदला, उसको आशा का नाम दिया गया. यानी कैलगरी में लगभग पिछले 10-11 साल से
1: जी.
0: आशा या सफर कुछ भी आप कहें, वो काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं. और इसका श्रेय जो है वो सुनीता जी को जाता है, मिसेज सुनीता डूपर. और ये जो दौड़ की बात है जिसको, यानी हम जिस दौड़ की आज बात करने आए हैं, उसका श्रेय इनके बेटे डॉक्टर अर्जुन डूपर जी को जाता है, जो सनी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं. तो उसके बाद मैं, आप अपना नाम बताएंगे जरा, थोड़ा आगे कर लीजिएगा इसको.
2: हाँ जी, धन्यवाद रमेश जी. मेरा नाम शालिनी है और मैं भी वन ऑफ द कम्युनिटी लीडर
0: जी.
2: और अभी इस आज के जो कार्यक्रम है उसमें मैं सुनीता जी को सहयोग करने के लिए आई हूँ और वन ऑफ द पार्टिसिपेंट फॉर द 5K रन. So,
0: सुनीता जी से हम सारा कार्यक्रम सुनेंगे, ये क्या करने वाली है, कब, कितने बजे, कैसे.
2: इनिशिएट लिया है तो आशा सर्कल ने.
0: जी जी. तो और यानी आप कब से जुड़ी हैं इसके साथ?
2: आशा सर्कल के साथ तो थोड़ा समय हो गया है, 1-2 साल से. लेकिन सुनीता जी को पर्सनली मैं काफी समय से जानती हूँ, ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स
0: जी.
2: तो ये मुझे पता है कि वो काफी पुराने टाइम से ही ये सब काम करती रहती है, वॉलंटियर करती रहती है और कम्युनिटीज में जुड़ी हुई हैं. तो मैं पहले थोड़ा यूपी एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ और अभी थोड़ा थोड़ा सभी कम्युनिटीज से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ वॉलेंटियर वर्क चलता रहता है. जो भी कभी कहता है कि हमें यहाँ पर जरूरत है वॉलेंटियर की, सो आई एम जस्ट गिविंग माई टाइम.
0: सो व्हाट डू यू डू अदरवाइज, और व्हाट यू वर डूइंग?
2: आई विद द आशा सर्कल.
0: नहीं, इसके अलावा अपने निजी जीवन में क्या?
2: हाँ, निजी जीवन में मेरा, मैं जो हूँ सीबी, आई एम वर्किंग विद सीबी एंड आई हैव 3 गर्ल्स एंड आई हैव माय हस्बैंड हेयर, इज लिविंग आउटसाइड एंड अदर देन वी केम हेयर फ्रॉम, ओरिजिनली वी आर फ्रॉम यूपी.
0: जी.
2: सो वी
0: यूपी के कौन से जिले?
2: मुजफ्फरनगर से है.
0: मुजफ्फरनगर से.
2: हाँ जी. और मेरठ के पास, हरिद्वार के पास जो.
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खड़ी बोली के लिए जाना जाता है.
2: मुजफ्फरनगर इज वेरी पॉपुलर.
0: और वहीं की हिंदी जो है वो सभी हिंदी पे थोप दी गई है.
2: जी जी. हम लोग वहीं से हैं.
0: जी जी.
2: और तो वहीं पर पले बड़े हुए हैं, फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद फिर यहाँ पर आ गए. सो आई एम हेयर फ्रॉम लास्ट 25-27 ईयर्स ऑलमोस्ट. और आशीष, आई थिंक सुनीता जी को मैं तभी से जानती हूँ, फ्रॉम लास्ट 27-30 ईयर्स.
0: नहीं, सुनीता जी का तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा कुनबा बना लिया है.
2: हाँ.
0: और इनके बहुत से बच्चे, बहने, भाई सब जुड़े हैं.
2: एक्चुअली 2 वीक्स अगो उनके यहाँ, उनके घर पे जाने का भी मौका मिला और उनके फैमिली, उनके सनी एंड डॉटर इन लॉ एंड 2 स्वीट यंग लिटल ग्रैंडसन, द होल फैमिली,
0: उनका जिक्र हो रहा था.
2: सुनीता जी जैसी हैं, उनकी फैमिली उनसे भी ज्यादा ऑसम है.
0: नहीं, देखिए सुनीता जी का जो परोक्ष अगर उसमें जाए तो इनके पिताजी IAS ऑफिसर थे और
2: ये वो सारा एक, हमें नहीं पता
0: वो सारा कल्चर, वो सारी संस्कृति जो एक यू नो सभ्य लोगों की रहती है, वो इनकी भाषा में है, इनके बैठने उठने में. मैं थोड़ी देर पहले इनसे मिला था और मुझे वो नजर आई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यानी एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में, क्योंकि बहुत से जब हम 47 में आजाद हुए तो हमें बहुत से लोगों की, प्रशासनिक लोगों की जरूरत थी, टीचर्स की जरूरत थी, यानी हर किस्म के उसकी जरूरत थी, उस तरह के लोगों की जो हमारे नेशन का निर्माण कर पाते. तुम्हारे राष्ट्र निर्माण में जैसे इनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, डेफिनेटली तब के सब लोगों का रहा है.
2: हाँ, मेरे ग्रैंडपा, ग्रैंड ग्रैंडपा वाज आल्सो बिग लॉयर एक्चुअली, बिग
0: लाइक,
2: तो फिर उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा.
0: नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली. देखिए
3: माय ग्रैंडफादर वाज अ डीएसपी.
0: या देखिए ना, बात यह है कि अगर हम यहाँ पहुंचे हैं, हमारा भारत यहाँ पहुंचा है, तो उसके पीछे हमारे बड़े ही थे जिनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं. उनकी मुझे लगता है गलतियां कम होंगी लेकिन अच्छे काम ज्यादा होंगे.
2: राइट. और अभी तो देखिए जो है हमारे, आई एम सो प्राउड ऑफ माई भारत. राइट नाउ थिंग्स आर वेरी गुड, लाइक
0: एवरीबडी शुड बी.
2: एंड वेन एवर वी गो ओवर देयर, वेन एवर आई विजिट देयर, बेसिकली आई जस्ट गो एवरी ईयर टू मीट माई पेरेंट्स एंड फैमिली. सो एवरी ईयर आई रियली फील प्राउड ऑफ भारत बिकॉज ऑफ what's the roads are happening.

0: बिल्डिंग ऑन द रोड, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जो भी वहां पर काम हो रहे हैं, और जो भी वहां पर जो लेडीज थी थोड़ी सी उनको एक्स्ट्रा फ्रीडम मिली है, दे आर ऑल वर्किंग एंड लाइक इक्वली वर्किंग. सो विच इज देयर लॉट ऑफ फ्यू.
1: शालिनी जी, ऐसा होता है कि जब हमें माता पिता कुछ अच्छा या जो भी देखे जाते हैं तो उसको अगर हम आगे ना बढ़ाएं तो फिर तो हम तो बहुत नालायक रहेंगे. तो हम, मेरा ख्याल है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो फर्दर एज ए नेशन, एंड आई थिंक वी आर ऑल गोइंग वेरी वेल. एंड सारे विश्व में हमारा नाम है, सब जानते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, सब जानते हैं कि बहुत बड़े इंजीनियर्स यहाँ से पैदा हुए हैं, आईटी में हमारा कितना नाम है. और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे भारत में हैं और आगे बढ़ रही हैं. बिल्कुल आपने सही कहा. तो मैं सुनीता जी से थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा. एक तो हाँ, थोड़ा और जितना करीब कर लेंगे बेहतर रहेगा. सुनीता जी, एक तो हमें बताएंगी कि ये कब सारा कार्यक्रम हो रहा है और किस उत्साह से हो रहा है. और मैं ये देख रहा हूँ पोस्टर, इसमें लगभग आपने 25 स्पॉन्सर्स जोड़े हुए हैं.
2: जोड़ गए.
1: हाँ, मतलब
2: ये जुड़ गए.
1: नहीं, वो आपकी वजह से जुड़े हैं. जी,
2: हमने जब बोला कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं.
1: जी तो, जी जी,
2: तो आप लोग हमारे साथ आके वॉक करें, रन करें.
1: जी जी जी,
2: तो सब इतने एक्साइटेड थे कि हेल्थ को लेके आप लोग 90 डेज का चैलेंज बना रहे हो और इसका प्रोग्राम ग्रैंड फिनाले इतने जोर शोर से करना चाह रहे हो. और पहले हमने बहुत लोगों को अप्रोच भी किया था कि प्लीज हमें स्पॉन्सर करो, तो हमें कोई ढंग से जवाब नहीं मिल रहा था.
1: जी जी जी,
2: ऑनेस्टली. लेकिन जो ये है ना, वो कहते हैं ना, हमारे हनुमान दादा पकड़ के लाए सबको और सब हेल्थ को ही चाहते.
1: जी देखिए, मैंने ये बात इसलिए की कि लोगों को जोड़ना और फिर स्पॉन्सरशिप के लिए जोड़ना, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए. उसके लिए आपका एक यू नो, यू हैव टू हैव ए रेपुटेशन. तो बिना उसके बात नहीं बनती ना जी. तो इट इज सो, आई मीन आई एम सो प्लीज टू सी कि ये कितना. हाँ जी, और आपने तो सारा श्रेय भगवान जी को दे दिया. बिल्कुल. लेकिन हम तो आपको देख रहे हैं और आप में प्रभु हैं हमारे लिए.
2: जी बिल्कुल जी. हम जो जिन्होंने 90 डेज चैलेंज में हिस्सा लिया, उनको वहाँ आना पड़ेगा.
1: जी,
2: वॉक करनी पड़ेगी.
1: जी,
2: और रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं भी हो रहा तो वहीं आके कर लीजिएगा.
1: जी,
2: क्योंकि हम लोगों ने 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है.
1: जी जी, थोड़ा समय बताइए, तारीख बताइए.
2: हाँ जी, 4 अक्टूबर संडे है, वेदर बहुत अच्छा है, प्लस 20.
1: 4 अक्टूबर जी,
2: और 9:30 बजे से हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे.
1: जी,
2: 30 पे.
1: जी,
2: ताकि उनको बिग मिले नंबर वाला पहनने वाला, फिर उनको टी शर्टें मिलेंगी.
1: जी जी जी.
2: और उसके बाद में 11 बजे रन करने वाले रन.
1: चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी टी शर्ट मिलेंगे.
2: हाँ, बिल्कुल. और रन के बाद सबको मेडल्स मिलेंगे.
1: जी,
2: और जिन्होंने 90 डेज हमारे साथ वॉक करी है, जिसने हिस्सा लिया है.
1: जी,
2: इवेंट बनाने में, पिकनिक करने में.
1: जी,
2: उन सबको भी हम लोगों ने फाइनलिस्ट कर दिया. नाम मैं आज नहीं बताऊंगी.
1: जी,
2: नाम हम वहीं बताएंगे.
1: डीजे
2: है, म्यूजिक है, सिंगर्स हैं वहाँ पे, खाना पीना भी है.
1: जी जी.
2: और जब उनको वहाँ नाम स्टेज पे बुलाया जाएगा तो उनके लिए सरप्राइज होगा कि वो जीते हुए इसके.
1: तो ये 90 डेज का जो थोड़ा आपने बात की है, इसका जो जादू है, इसका जो करिश्मा है, उसके बारे में थोड़ी बात बताइए. व्हाट हैपेंड इन 90 डेज, हाउ इट वाज कंसीव्ड.
2: नहीं, 90 डेज का एक ऐप बनाया था बेटे ने, क्योंकि सनी डॉक्टर ने बोला कि हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर ही
1: जी
2: बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं.
1: जी जी.
2: और 30s में ही डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन हो रहा है.
1: जी,
2: पेन लेके आते हैं उसके.
1: जी जी जी.
2: तो उसने बोला मेरे को कुछ करना है, तो हमने कहा क्या करोगे. तो उसने पता नहीं कहाँ से अपनी ऐप बनाई, उसने खुद मेहनत की है.
1: जी.
2: और उसने कहा था इसको जो भी लोड करेगा और रात को उसको सिंक करेगा तो हमें पता वो चल रहा है.
1: जी.
2: वो हमें बता रहा है.
1: जी.
2: और उसके अंदर, उसके बाद उसने कहा था कि 90 डेज के बाद, मैंने कहा फिर तुम क्या करोगे, तो कहता है फिर हम उसके ग्रैंड फिनाले करेंगे, हम लोगों से 5 वॉक कराएंगे.
1: जी.
2: वो मुझे भी हर साल मदर्स डे पे 5K के वॉक करवाता है, जो स्पोर्ट चेक वाली होती है.
1: जी.
2: उसमें भी मैं जाके करती हूँ. और हम एशियन कम्युनिटी का ये रेगुलर बेस पे हेल्थ को लेके बनाया जाएगा. और उसको ये है कि मैं अपनी एशियन कम्युनिटी को कैसे वापस दूँ, अपनी सर्विस को कैसे दूं. जॉब तो
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. जी जी.
2: तो यही है कि जिससे लोग मिलेंगे, डिप्रेशन नहीं होगा, आपस में बात करें, मशीनों को छोड़े, फोन को छोड़े, टीवी को छोड़े,
1: जी,
2: बाहर निकले.
1: जी जी. उनके इतने सुंदर विचार बिल्कुल उनके माँ बाप की वजह से ही है. मैं बिल्कुल स्पष्ट है.

0: Yeah, my name is Prince. I'm the physiotherapist, one of our sponsors. I work with Infinity Health. They are the sponsors of this Stronger Together 5K and 5K walk and run program. I also thank everyone, those who are joining. And also, I'm glad that I'm a part of this. As a physiotherapist, we always tell everybody to keep moving, be active, and do exercises to maintain a good health. Exercises not only bring physical health, but also mental health, being, we say, physical and mental well-being with exercises. So this is a very good initiative. I'm thankful that I'm also part of it. So our team also will be joining on October 4th at the Prairie Winds Park in Calgary, Northeast. So those all listening to this program, we all invite you. Bring your family, bring your friends for this great program, for this 5K run and walk program. So we welcome you all.
1: Yeah. So, the Malayalam language, like we have someone who can say it, like in that one.
0: Okay. Stronger Together എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആഷ സർക്കിൾ അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഒക്ടോബർ 4th രാവിലെ 9:30 പ്രയർ ഇവൻസ് പാർക്കിൽ കാൽഗറിയിൽ ഒരു 5K വാക്ക് ആൻഡ് റൺ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കടന്നു വരിക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
1: See, I think हमें समझ आ गई साथ में बैठ के कि ये क्या कह रहे हैं और ये वही मैसेज दे रहे हैं सबको जो हम देना चाह रहे हैं. आशा सर्कल एक बार फिर से आप सबको खुला निमंत्रण दे रहा है कि सभी आप पहुंचे. 4 अक्टूबर को संडे का दिन है, वेदर बहुत अच्छा है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, कोई लेजी बनने की जरूरत नहीं है, नो एक्सक्यूजेज. और कोई हमें ये नहीं कह सकता हमने इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि जगह जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अदर टीवी चैनल्स पे, रेडियो चैनल्स पे, हर जगह पे हमारी अनाउंसमेंट है. डे वन से लेके अब तक आप लोग हमें मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, ये पक्की बात है. ना तो किसी का एक पैसा भी खाया है, ना ही हमने किसी का एक पैसा भी वेस्ट करवाया है. लेकिन फिर भी आप अपनी अगर मेडिकल रिपोर्ट्स देखें तो आपके अच्छे मार्क्स आपको दिलवाने में हम काफी कोशिश कर रहे थे, उसमें हम कामयाब हुए हैं. इसका हम क्रेडिट लेना चाहते हैं आपके पहुंचने पर, आपके साथ देने पर, साथ चलने पर. ना तो हमें कोई इनाम की इच्छा है, ना हमें कहते हैं दाम की इच्छा है, क्योंकि बॉडी आपकी, संसार हमारा, कम्युनिटी हमारी, हम उसे बिल्ड कर सकें. सनी दुप्पर जी ने जो कोशिश की, जतिन कपूर जी, शमा कपूर यहाँ पर हमारे सुनीता दुप्पर जी, सुभाष दुप्पर जी, छोटे छोटे बच्चे और अंशु जी, जो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है आशा सर्कल सफर के नाम से, पहले चलने के बाद उस सफर के चलते चलते एक सर्कल तक पहुंच गए हैं. सर्कल में घूम घूम के अब उस सर्कल में सब आते जा रहे हैं और आज आप सुन ही रहे हैं रमन जी, जो हमारे साथ कम्युनिटी के एक लीडर है, जो बहुत कुछ कर रही हैं हमारी सोसाइटी के लिए, वो भी हमारे साथ दो कदम चल पड़ रही हैं. तो एक कदम आप बढ़ाइए, दो.
2: आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग टू मिस्टर प्रिंस, बिकॉज यू आर ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नो व्हेन वी रन रॉन्ग, व्हेन आवर स्टेप्स आर नॉट गुड इनफ, वी डोंट हैव गुड शूज, वी डोंट हैव गियर, यू नो ऑल द गियर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग. And what care we have to take when we make our mind to run, because this is going to be a show, but that does not matter. What matters is after the show, the people, those who will get motivated, you know, will get spirited, they would like to continue the race of running every day in life. So I would request you to put some light on these issues, starting from what is really required, what kind of shoes we require.
0: For running, there

0: that dehydration?
1: Taking enough water. That's the easiest way. And there are a lot of other products available in the market where you can add up the electrolytes that is lost. But water is the best hydrating agent, rather than using other chemical, juices or things like that.
0: Thank you very much for the time being, because I may come to you once again.
1: Sure.
0: I would like to go to Sunita ji. ये जो आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और इसकी जो आपकी प्रेरणा स्रोत हैं वो आपके पुत्र हैं, जैसा कि मुझे आपने बताया भी और मैं बातचीत में इसको थोड़ा माइक और पास कर लीजिएगा, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि ये, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत बड़ा आप कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बात के हम सब कोई किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी प्रिंस जी से बात की थी कि हमारे, जब हम अपने प्रदेश की, अपने देश की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई खास करके औरतों के लिए, इवन मर्दों के लिए भी, ज्यादातर लोग दौड़ना और सुबह उठ के इतना, जबकि मैं जब यहाँ आया कैलगरी में आया, क्योंकि मैं कश्मीर से आता हूँ, मैं कश्मीरी फॉर दैट वे, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमृतसर, तो मेरे में अमृतसर का वो जोश है और वहां की जो सुंदरता कहीं मेरे आंखों में बसी है। यहाँ जब मैं आया तो मुझे एकदम लगा ये कितना सुंदर कश्मीर यहाँ आ गया है, बिल्कुल। और यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी बात की लगी कि यहाँ के बच्चे, युवा, बूढ़े, बूढ़ियां सब चल रहे हैं, भाग रहे हैं और अपनी शायद सेहत की उसको, यानी उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी सेहत बनी रहे, सब अच्छा रहे, ठीक रहे। तो ये एक तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप इसका आयोजन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आप इसका आयोजन करेंगे और करते रहेंगे और हमारे जो युवा हैं और जो बच्चे हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे खास करके जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ के करिकुलम में, यहाँ के वातावरण में वो सब उनके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत होती हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग जो वहां से आए हैं, उनका जुड़ना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो उनकी सेहत ठीक रहेगी, एक उनका खर्चा कम होगा और यहाँ के जो मेडिकल का जो सारा विभाग है उस पे भी थोड़ा बोझ कम पड़ेगा, है जी। तो जी,
2: हेल्दी रहेंगे,
0: तो आप कुछ बताइए इसके बारे में, ये मतलब बहुत उत्तम विचार है।
2: नहीं नहीं, बस यही सोचिए कि अगर आप हेल्दी हो तो आप, जैसे आपने बोला है, फैमिली के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं कर रहे हो, आप फैमिली में खड़े होकर साथ हो, आप बच्चों को टेक केयर कर सकते हो, ग्रोसरी करके ला सकते हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी खर्चा कम होता, नहीं तो बार बार डॉक्टर के ही जा रहे हैं। एक बार मैं इतनी बीमार थी कि लोग मुझे फोन करके पूछते थे तू जिंदा है या मर गई है, जब देखो तू हॉस्पिटल में बैठी रहती है। लेकिन हाँ, उस समय मेरी कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती थी, जैसे अभी प्रिंस जी ने बताया था कि जैसे जैसे मुझे डॉक्टर ने समझाया कि आप इस समय इतना इतना करो, और उसके बाद जब मैंने अपना एक ड्रीम अपने बेटे के सामने रखा कि मुझे कैलाश यात्रा करनी है, देन उसने उसको गूगल किया और उसको पता लगा कि कैलाश के लिए तो मम्मी रेडी नहीं है। फिर उसने बोला एक शर्त पर जाने दूंगा कि अगर आप मेरे साथ रोज इतने किलोमीटर चलोगी, और एवरी सैटरडे उसने मुझे सल्फर माउंटेन चढ़ाया जाने से पहले, और 15,000 के स्टेप वो मेरे डेली देखता था, और उसकी वजह से उसमें साथ बहुत लोग जुड़े हमारे। और उसके बाद में मैं लोगों को कहती रही, पर इंडिया में भी हमने देखा था कि हमारे बुजुर्ग जो 105-100 के थे, वो सुबह भी 15-20 मिनट की वॉक करते थे, रात को खाना खाने के बाद मोहल्ला सारा मिल के वॉक करता था। यहाँ हम अकेले कर रहे होते हैं, पर लोग फिर भी रुक के हाई हेलो तो करते ही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ कैनेडियंस जितने भी हैं, चाहे कोई भी वेदर हो, कैसा भी हो, वो लोग वॉक कर रहे हैं। मैं हालांकि 35 साल से हूँ, मैं स्नो पे नहीं चल सकती आज की तारीख में,
0: जी, जी, जी।
2: लेकिन मैं मॉल में चली जाती हूँ या घर में 1 घंटे की वॉक करती रहती हूँ।
0: उससे आपको बिल्कुल स्पष्टता है, आपको नजर आता होगा कि आपके सेहत में,
2: मेरी सेहत में इम्प्रूव हुआ है। या सब तो कई बार डॉक्टर भी पूछते हैं फोन करके, तू ठीक तो है ना, तेरी दवाइयां सही चल रही है? मैं कहती हूँ हाँ जी बिल्कुल चल रही है।
0: तो ये धूपर साहब ने इस सारे आयोजन में और आपके इस सारे चलने में उनका योगदान, उनकी बात बताएंगे?
2: 99%।
0: अरे वाह।
2: क्योंकि वो इतना बिजी था, फैमिली भी है, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन वो कहता था मम्मी बच्चे सो के उठेंगे उससे पहले हम 5 बजे सल्फर माउंट पहुंच जाएंगे, वहां से करके हम घर आ जाएंगे जब तक।
0: आप डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं?
2: हाँ,

0: मैं सुभाष दुबर जी की बात
1: करूं सुभाष जी ने बिल्कुल 101% हां वो कैलाश नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पेसमेकर लगा हुआ है हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको वीजा नहीं मिलना था
0: जी
1: लेकिन पीछे से उन्होंने पूरा साथ दिया अभी तो इस साल मदर्स डे पे 5K की वॉक की हमारे साथ
0: जी
1: सुभाष जी ने भी
0: सो ग्रेट
1: और वॉक करने जाते हैं
0: बावजूद इसके कि पेसमेकर लगा हुआ
1: हां उसके बावजूद
0: जी जी
1: क्योंकि यहां हमें लगता है कि करना चाहिए इनको भी और पूरा हेल्थ के हिसाब से वो भी अपना पूरा ध्यान
0: अब क्योंकि दर्शक भी थोड़ा जुड़ गए हैं और सुनने वाले तो खैर जुड़े ही हुए हैं मैं सबों को बता दूं कि मैं रमेश सबरंग रेडियो से बोल रहा हूं सबरंग आप सब जानते हैं कि समाज से कैसे जुड़ा हुआ है और भिन्न भिन्न जो समाज के लोग हैं जातियां हैं एथनिसिटीज हैं वो चाहे यहाँ की हों या वहां की हों उन सबका यहाँ पे कितना स्वागत रहता है और हम सब मिलके जितना भी काम करते हैं उसके प्रसारण में उसके प्रसार में जो सबरंग है उसका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है और सबरंग की एक कोशिश होती है कि हम हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों को अपने समाज तक लेके जाएं अपने लोगों तक लेके जाएं और लोगों के साथ बहुत जुड़े और मैं दर्शकों को ये भी बताता चलूं कि सबरंग का जो परिवार है वो बहुत बड़ा है यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर तक लोग हमें सुनते हैं और वो सब हमसे जुड़े हुए हैं अक्सर उनके टेलीफोन आते हैं वो अक्सर हमसे बातें करते हैं और एक बार फिर मैं सुनने वालों के लिए हम सब लोगों का परिचय दोबारा से पहले आप बताएं जी आपका शुभ नाम दोबारा से
2: जी मैं शमा कपूर और बिल्कुल हम लेके आए हैं जो 5K वॉक करवाने के लिए इनविटेशन आपके लिए आप ऑलरेडी जुड़े हुए 90 डेज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए और सबरंग में राजेश जी आपका सॉरी रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: राजेश जी का भी आप कहिए
2: हाँ जी मैं वही कह रही हूँ कि उनका
0: वो ना होते हुए भी यहाँ है
2: यहाँ पे है सो राजेश जी और ऊपर से रमेश जी क्या मतलब बात है दोनों RR से और यू हैव सच अ स्वीट वॉइस द वे यू आर टॉकिंग टू अस और जो आपने हमें वार्म यहाँ पे माहौल दिया है और
0: राजेश जी ने दिया
2: नहीं जी फिलहाल तो आपने दिया राजेश जी तो ऑलवेज देते ही हैं
0: लेकिन मैं जब भी स्टूडियो में आता हूँ ना आप यकीन करें मैं अकेला हूँ या उनके साथ हूँ तो मैं इस बात को कोई भूल नहीं पाता कि कैसे मैं उनके साथ जुड़ा और फिर उनकी वजह से मैं रेडियो के साथ जुड़ा
2: जी।
0: और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो एक भावना है इस रेडियो की वो यही है जैसे मैंने पहले कहा मैं आपके साथ जुड़ा मैं आपके साथ जुड़ा
2: मैं तो 2007 से पहले की राजेश जी से जुड़ी हुई हूँ
0: सबरंग
2: रेडियो में और इससे पहले भी जो धारीवाल जी थे हु वाज द मेन आई वाज विद हिम
0: तो आपका फिर से स्वागत है
2: जी बहुत शुक्रिया ले आज फिर से एक बार फिर से थैंक यू करते हुए सिर्फ और सिर्फ हम ये कहेंगे कि प्लीज डू कम ज्वाइन अस शो अस कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी आप सब हमारे साथ बैकबोन तो बने हुए हैं दो कदम साथ और चल लीजिए और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे कोई ना कोई रीजन है कोई वेकेशन पे गया हुआ है कोई बैक होम जबकि टीम बहुत स्ट्रांग है लेकिन जितने भी आएंगे मोस्ट वेलकम प्लीज आइए 9:30 पे हम लोग जो है वार्म अप होकर और बिब्स देकर
0: वहां पर जगह दोबारा से बताइए
2: वेस्ट विंड प्रेरी विंड पार्क जो है हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो अक्टूबर 4th को होने जा रहा है ये एक आयोजन है वहां पर हम सब की तरफ से विनती है कि आप पहुंचिए ताकि हम सारे मिलकर चले और मिलकर हम एक मैसेज दें ताकि अगले साल और लोगों को हम साथ में लेके आ सके क्योंकि हेल्थ तो रमेश जी एक दिन में नहीं बनती जो हमारा कॉन्सेप्ट था जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि 3 महीने हमारे हमने डॉक्टर्स के साथ बैठ के बात की सेव इस पूरे ऐप को बनाने से पहले बहुत मेहनत करी गई है और उन्होंने हमें बताया कि एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं हमारी बॉडी को मिनिमम 3 months चाहिए 90 days चाहिए एक्टिवेट होने के लिए
0: सही आपके जैसे व्यक्तित्व जब जुड़ेंगे इनके साथ तो चीजें तो बनेंगी ना जी क्योंकि ये सारा टीम वर्क है बहुत से लोग जुड़ते हैं करते हैं जैसे वुड यू लाइक टू से समथिंग इन द लास्ट जस्ट वन और टू सेंटेंसेस
3: नो इट्स अ गुड
0: नो से यस
3: या it's a good opportunity to build up the community make new friends and also you know bringing up your health think about your well-being physical health so join us on October 4th at the Prairie Winds Park Northeast Calgary thank you
0: aap hindi mein kuch kehne se pehle apna naam bhi batayenge dobara
4: mera naam shalini agarwal hai
0: ji
4: aur I am a big supporter of Asha Circle Association. So, आप सब लोग से विनती है आशा सर्कल एसोसिएशन

0: ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 5876174696 587-617-4696 ਓਇਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 5876174696 कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
1: जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 6477022023 647-702 VAE
2: लाइसेंस नंबर 10394
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार

0: पहुजा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस।
1: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ
0: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया
3: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757
0: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो हुन फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी अज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696 कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
4: जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 6477022023 647-702 VAE
5: लाइसेंस नंबर 10394
6: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नू कैद करदे होए इक फोटो इक वार
7: ग्रोसरी खरीदण लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
8: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी

Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal, and good Friday evening to all of you. It is 18 degrees in and around Calgary. Aaj hai September, October 2nd. October 2nd hai, saal ka 275 din, and there are 90 days remaining until the end of the year. प्रोग्राम संगीत स्टूडियो में हुशान वेलकम करता हूं टू अनदर ब्रांड न्यू शो योर वीकली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड हिट देसी म्यूजिक मैं अभी कुछ दिन पहले चाइना में था और वहां एक बहुत ही चाइनीज जो ट्रेडिशनल विजडम है वो बहुत पॉपुलर है तो एक लाइन जो मुझे याद रह गई उन्होंने कहा कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो And the second best time is today. एक और चीज कही जाती है कि आप जिंदगी में जिस मुकाम पे खड़े हैं ये उन फैसलों का नतीजा है जो आपने 5 साल पहले किए थे आज से 5 साल के बाद आप कहे कहां खड़ा होना चाहते हैं ये उन फैसलों का नतीजा होगा जो आप आज कर रहे हैं मतलब ये कि लाइफ आपको पूरी फेयरनेस के साथ अपॉर्चुनिटी देती है अगर फिर भी आपने कसम खा रखी है कि गड़बड़ करनी है तो फिर आप शिकवा ही कर सकते हैं ट्रंप को वोट दे के हालात अच्छे नहीं है गैस बहुत महंगी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप ये काम ना करते एनीवेज ये ऑन द लाइटर साइड प्रोग्राम लाइक ऑलवेज लोडेड है विद एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन यहां वहां की बातें टॉपिक ऑफ द वीक और आज मेरे पास गेस्ट है आपको मोस्टली लोगों को पता है कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कैलगरी इवेंट जो कि सालाना एक इवेंट है और सिग्नेचर इवेंट है कैलगरी का वो अक्टूबर 25th को होने जा रहा है 3 weeks अवे है बहुत ही मजे मजे की चीजें हैं लाइक ऑलवेज उस पर बात करने के लिए वैसे तो हमारी टीम में हर उम्र के लोग हैं यंग मिलीनियम ओल्डर मिलीनियम यंगर मिलीनियम और हर तरह के लोग हैं बट मेरी खुशकिस्मती यह है कि आज के प्रोग्राम में जो हमारी यंगस्टर्स की टीम है ब्राइट स्टार्स हैं जो बच्चे हैं

0: Sangeet washes away the dust of everyday life.
1: Love in search of words.
2: Welcome back, 94.7 FM पर प्रोग्राम संगीत being brought to you by Source Sangam Radio. मैं हूँ शान. स्टूडियोज का नंबर 403-717-1947. कोई तारीफ तनकीद छोटी सी प्यारी सी बात हो तो जरूर कीजिए. मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ आज की हमारी जो

0: गेस्ट्स हैं, तीन बहुत ही कहना चाहिए हमारी की मेंबर्स ऑफ आवर यूथ टीम, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कैलगरी चैप्टर जो है. इस चैप्टर के बारे में एक तो खैर क्विकली आपको बता दूं, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देता हूं कि इमरान खान जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, एक इंटरनेशनल स्टार, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सारी दुनिया उनको जानती है, उनकी मदर का नाम शौकत खानम था. उनकी डेथ कैंसर से हुई थी एंड उन्होंने अपनी मदर का इलाज इंग्लैंड में करवाया था लेकिन उनकी डेथ हो गई. और वो इतना डीपली, इतना प्रोफाउंडली इससे इफेक्ट हुए कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी माँ के एक हॉस्पिटल बनाऊंगा कैंसर का जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त होगा और उसका नाम मैं अपनी माँ के नाम पर रखूंगा जिनका नाम शौकत खानम था. तो ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी है. 1992 के वर्ल्ड कप से उन्होंने इस पे काम शुरू किया और फिर 5-6 साल के बाद पहले लाहौर वाला हॉस्पिटल, आई थिंक 97 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 97 में पहले लाहौर में हॉस्पिटल बना, फिर पेशावर में बना और अब कराची में बनने जा रहा. तीनों हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट हैं. दुनिया के जितने बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स को मॉनिटर करते हैं, ऑडिट करते हैं या उनकी क्वालिटी को चेक करके सर्टिफिकेशन करते हैं, वो सारी की सारी उन हॉस्पिटल्स की आप गूगल करें, आप पढ़ लें उनके बारे में, चैट जीपीटी से कहें, जहां मर्जी चले जाएं आपको पता चल जाएगा. द कराची वाला जो हॉस्पिटल है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, जो कराची में बन रहा है वो कराची को, इंटीरियर को और बलूचिस्तान को सर्व करेगा. ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है कम्प्लीटली फ्री होता है, कुछ का 5%, कुछ का 10%, किसी का 50%, और जो 4-5% लोग पूरा अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरा देते हैं. बट द ट्रीटमेंट इज एज गुड एज बीइंग इन एनी वेस्टर्न डेमोक्रेसी या एक डेवलप्ड कंट्री में आप जो करते हैं. तो ये तो कहानी. अब शौकत खानम, इतना बिलियंस ऑफ रुपीज का उसका खर्चा चलता कैसे? कंट्री के अंदर डोनेशन देते हैं लोग, सपोर्ट करते हैं, ओवरसीज जो एक्सपर्ट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं और इस तरह से उनका चलता है. मैं जस्ट टू गेट एन आइडिया, मैं आपको सिर्फ बताऊं कि लाहौर और कराची हॉस्पिटल का एक साल का जो रनिंग बजट था 2024 का, दो साल पुरानी में बात कर रहा हूं, वो 8 बिलियन रुपीज का, 8 बिलियन रुपीज था. अब इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हाउ जाइगेंटिक बिग और कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये. और ये रिसर्च सेंटर भी है तो साथ रिसर्च भी करता है, लैब्स पूरे कंट्री में. ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था. अब जो कैलगरी का इवेंट है वो कनाडा का सेकंड सबसे बड़ा इवेंट होता है आफ्टर टोरंटो. टोरंटो में सबसे ज्यादा मनी भी रेज होती है, कम्युनिटी बड़ी रहती है, एंड दूसरे नंबर पे कैलगरी एंड देन वैंकूवर, एडमिंटन एंड सम अदर सिटीज. एंड कैलगरी का इवेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बहुत यादगार इवेंट होता है फैमिलीज के लिए. जो लोग आते हैं टाइम से शुरू होके स्टेज पे आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, खाना अच्छा होता है, ऑडियंस बहुत अच्छी होती है, हु इज हु फ्रॉम द कम्युनिटी वो वहां पर आपको नजर आते हैं. सो इट्स समथिंग दैट कॉज के लिए तो पैसे जा ही रहे होते हैं, एक अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली योर सिग्निफिकेंट अदर या अपने बच्चे या किसी को भी आप लाके वहां पर देखना चाहते हैं, तो दिस इज अ इवेंट जो कि एक सिग्नेचर इवेंट बन गया है कैलगरी का. नाउ इनफ अबाउट शौकत खानम. अब हम बात करते हैं जो मेरे साथ गेस्ट है, हमारी जो सीनियर्स, जो सीनियर से कहना चाहिए, जो हमारी एक वॉलंटियर्स की टीम है, उसके साथ साथ पैरेलल हमारी एक यूथ की टीम है. ये वो बच्चे हैं जो मोस्टली कनाडा में पैदा हुए या बहुत यंग एज में आ गए थे और इनका कनेक्शन बैक होम के साथ होना जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी है कि क्यों है, कि इनके लिए क्या मैटर करता है, इनके लिए पास यहाँ क्वालिटी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है तो ये क्यों करते हैं. मेरे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त तीन बहुत ही जबरदस्त किस्म के ब्राइट स्टार्स, लीना है, लाइजा है एंड अरीश है. आप सबको वेलकम करता हूँ टू संगीत स्टूडियो. क्या हाल चाल है और आप कैसी हैं सब?
1: Thank you for having us. We're good. Good evening, everyone. It's good to be here.
0: और ये मैं बता दूँ, ये लीना की आवाज़ थी. जी अरीश, आप बताइए क्या हाल चाल है, कैसी हैं?
1: Hi, I'm good too. I hope everyone's doing good and enjoying the weather outside. I know it's a little bit chilly.
0: But still, keeping in mind that it's October, so it's still not that bad. Yeah. Liza, आप कैसी हैं?
2: And I'm really happy to be here today to talk about the cause and also discuss how we navigate the youth team.
0: मेरा क्वेश्चन पहले तो थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड तो बता ही दिया शौकत खानम का, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव बीन इन्वॉल्व विद दिस कॉज और विद दिस चैप्टर फॉर ओवर मेनी इयर्स नाउ, मुझे याद तो नहीं है. क्वेश्चन सीरियसली एक ये होता है कि जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं बेसिकली उनके पास पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, लाइफ ठीक है, फ्री एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, सारा सिस्टम ठीक है. जाहिर है क्या वो चीज़ है आपको जो आपका कनेक्शन था बैक होम से कि आपने सोचा यू नो व्हाट, हमें अपनी बिजी स्टडीज में से, लाइफ में से टाइम निकाल के इस कॉज को सपोर्ट करना है. और मंथ टू मंथ तो काफी काम होता है जब शुरू हो जाती है हमारी प्लानिंग.

Georgia. But this is the modern version. For the change, मुझे अच्छा लगा था. I hope आपको भी पसंद आएगा. मैं ते मेरा दिल भर जानी. क्या था आगे? बुलियां ते प्यार कहानी.

0: Welcome back in Sangeet Studio, your weekly dose of entertainment, information and hit desi music. Har Friday ko mera aur aapka saath rehta hai. The show is being brought to you by Sur Sangam Radio. Main hoon Shan, 403-612-6100. Number hai aur time thoda hai. Do piece of information aapki nazar karni hai. Ek to Prime Minister Carney कंटिन्यू कर रहे हैं अमेरिका पे अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड की डिपेंडेंसी है उसको डिवर्सिफाई करने की और वो डिवर्सिफिकेशन आपको इतनी सरफेस में नजर आ रही है कि अब नंबर भी आपको बताने लगे हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी इज गोइंग टू विजिट टर्की टर्की नेटो का मेंबर है बड़ा कंट्री है और कनाडा के साथ जो उसकी ट्रेड है वो बहुत नॉमिनल है बहुत थोड़ी है और नेटो कॉन्फ्रेंस में जब प्राइम मिनिस्टर कार्नी गए थे तो ये टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तय्यब अर्दोगान उनसे मिले थे और तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि टर्की के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाने हैं ट्रेड बढ़ानी है दोनों तरफी और अवामी सतह पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने उस वक्त ये तय हुआ था कि लेटर ऑन तय्यब अर्दोगान कनाडा को विजिट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर कार्नी टर्की को विजिट करेंगे तो डेट तय नहीं हुई लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्रेड एनर्जी एंड डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर कार्नी रीसेंट डेकेड्स में मेनी मेनी डेकेड्स में पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे कैनेडियन जो टर्की को विजिट करेंगे सो गुड फॉर कैनेडा और अच्छी न्यूज की बात निकली है तो कैनेडा मूव्स अहेड विद मेजर अल्बर्टा बीसी पाइपलाइन प्राइम मिनिस्टर कार्नी फोर्ट मैकमरी में थे परसों और उन्होंने अनाउंस किया है और जो बिल सी फोर था उसके तहत जो नेशनल इंटरेस्ट के बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे उनमें से ये पहला प्रोजेक्ट है जो बीसी की तरफ पाइपलाइन बनेगी और उसको प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने कहा कि ये वो स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसकी बात की जा रही थी इस पे जो खर्चा है डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं 35 से लेके 43 बिलियन तक का होगा लेकिन इससे जो ट्रेड ग्रो होने वाली है वो बहुत ही बड़े लेवल पे 140,000 जो है जब ये बन जाएगा फुल एक्टिव होगा तो 140,000 तक की जॉब्स जो हैं वो इससे क्रिएट होंगी और जो रेवेन्यू है 2026 तक वो 100 बिलियन डॉलर तक जा सकता है पर ईयर सो दिस वाज अ मेगा मेगा प्रोजेक्ट जिसका बहुत इंतजार था वो हुआ भी एंड डैनियल स्मिथ जिनका जाहिर है ऑटवा के साथ हमेशा जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो थे तो लड़ाई झगड़ा रहता था लड़ाई झगड़ा से मतलब एक डिसएग्रीमेंट सीरियस पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी और हर तरह के वो पीछे खड़ी थी प्राइम मिनिस्टर कार्नी की उन्होंने जोर से तालियां बजाई और उसको लेके अब ओवरऑल वैसे भी प्राइम मिनिस्टर कार्नी अल्बर्टा में जितने पसंदीदा हो चुके हैं ही इज मोर पॉपुलर देन डैनियल स्मिथ इज मोर पॉपुलर देन पियर पॉलिवर अल्बर्टा में अगर वो आज इलेक्शन लड़े हैं तो शायद अल्बर्टा के प्रीमियर भी बन सकते हैं सो अल्बर्टा प्रोविंस में किसी लिबरल प्राइम मिनिस्टर का इतना पॉपुलर होना ये रिसेंट हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा था बट हैविंग सेड दैट कनाडा के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इसके साथ ही टाइम खत्म हुआ जा रहा है ना पहले कभी रुका है ना आज रुकेगा आई विश ऑल ऑफ यू लव पीस रिस्पेक्ट हेल्थ वेल्थ आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे और फिर आएंगे घर खुदा लाया
1: शुक्रिया आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया शुक्रिया